ओमो अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया हुम पे ओम अ हुम ओ अजामला वलाया

ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को हम अक्सर कैलाश में खोजते हैं, लेकिन भगवान शिव कैलाश में नहीं, हमारे हर श्वास में है। जब मन शांत होता है तब भगवान शिव की अनुभूति होती है। आज की यह प्रस्तुति कैलाश के वासी शिव से अपने भीतर समाते शिव तक उसी भाव की एक छोटी सी यात्रा है।

स्वामी, हरियाणा की पावन धरती से हम आए हैं। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के दीप जलाए हैं। ना ये केवल शब्द हैं, ना ये कोई गान है, हर भक्त के हृदय की ये सच्ची पहचान है। तन मन कर्म का थाल सजाकर लाए हैं, हर श्वास में आपको ही बसाए हैं। मंदिरों तक सीमित नहीं आपका ये नूर, कण कण में बसते हैं आप, हर दिल में भरपूर। स्वीकार करो प्रभु ये प्रेम अर्पण हमारा, आप ही हो सहारा, आप ही आधार हमारा। प्रस्तुत है हरियाणवी गीत।

स्वरूप स्वामी। इस संगीतमय प्रस्तुति का प्रत्येक स्वर, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक भाव आपके प्रति हमारी भक्ति, हमारे समर्पण और कृतज्ञता का एक छोटा सा पुष्प है, जिसे हम बड़े प्रेम से आपके श्री चरणों में अर्पित करने की अनुमति चाहते हैं। प्रभु, आपके अनंत स्वरूपों श्री कृष्ण, पांडुरंग, जगन्नाथ, श्रीनिवास और हमारे प्रिय साई का स्मरण करते हुए हम अनुभव करते हैं कि नाम अनेक हैं, पर प्रेम का आधार एक ही है, आप। हे हृदय तरंगा, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा जीवन सदा आपके प्रेम, आपकी सेवा और आपके श्री चरणों में ही व्यतीत हो। साई कृष्ण अर्पणम।

23 नवंबर सन 1926 का वो दिन जिस दिन भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। मां ईश्वर अम्मा की गोद में एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जो आगे चलकर करोड़ों दिलों के साईं बन गए। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, स्वामी आपने तो केवल एक ही धर्म सिखाया, इंसानियत का धर्म। आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं एक मानव रूप को धारण करने वाले परब्रह्म के जन्म वर्ष के उत्सव को मनाने के लिए। अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम और अपनी भक्ति को स्वरों में पिरोकर हम प्रस्तुत करते हैं एक कवाली, साईं बाबा तुम्हारा जन्मदिन।

ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रेम भरी साई राम। आज का दिन जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं चंडीगढ़ स्टेट के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सावन माह के इस पावन महीने में हम लॉर्ड शिवा के चरणों में बैठ के प्रशांति सेवा साधना व प्रति यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बाबा, हम सदैव आपके आभारी हैं। आपने आज से अनुमानतः 5000 वर्ष पूर्व हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि को धर्म की स्थापना के लिए चुना। पुनः वर्तमान युग में श्री सत्य साई अवतार के रूप में 2 अप्रैल 1972 को आप कुरुक्षेत्र पधारे। यह वाक्य था ऑल इंडिया साधु समाज का सम्मेलन, जिसमें भगवान बाबा को श्री गुलजारी लाल नंदा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आमंत्रित किया था। जिस दिन भगवान कुरुक्षेत्र आए, उस दिन सभी ओर जनमानस का सैलाब था। प्रशासन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई। संचार का कोई सशक्त साधन न होने पर भी अनुमानतः 3 लाख लोग एकत्रित हुए थे। सभी ने स्वामी के उद्बोधन का लाभ उठाया। भगवान आपकी जन्मस्थली व कार्यस्थली पुटापर्ति जरूर है, किंतु आप हर भक्त के दिल में वास करते हैं। इस प्रेम से सरोवर होकर भक्त जन सुदूर प्रदेश हरियाणा एवं चंडीगढ़ से यहां पुटापर्ति बार बार आते हैं। बाबा, हरियाणा वह प्रदेश है जहां का जवान, जहां का किसान और जहां का खिलाड़ी अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहां यह कहावत बहुत प्रचलित है, सेना में जवान, खेत में किसान व मैदान में खेलवीर। यहां का खान पान, रहन सहन बहुत ही साधारण एवं सरल है। इसी मिट्टी में पले बढ़े आपके भक्त सदैव सेवा कार्यों में कार्यरत हैं। स्वामी, हरियाणा एवं चंडीगढ़ में श्री सत्य साई सेवा संगठन की स्थापना 1970 के दशक में हुई थी। वर्तमान में 15 जिले एवं 50 श्री सत्य साई सेवा समिति सेवा कार्यों में कार्यरत हैं। पूरे प्रांत में 12 श्री सत्य साई सेवा केंद्र, 1 श्री सत्य साई ओल्ड एज होम जो कि चंडीगढ़ में है, 1 श्री सत्य साई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौधरीवास जिला हिसार में, ये सभी श्री सत्य साई ट्रस्ट हरियाणा एवं चंडीगढ़ के अधीन कार्यरत हैं। श्री सत्य साई ओल्ड एज होम लव ऑल सर्व ऑल का एक अनुपम उदाहरण है। श्री सत्य साई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौधरीवास जिला हिसार व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी 350 कन्याओं को प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। पूरे राज्य में भजन, बाल विकास एवं सेवा कार्यों में सभी भाई बहन मिलजुल कर और बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मुझे हर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष 2025 के कुछ मोमेंट्स को याद करने में आनंद आएगा। हमारा श्री सत्य साई क्रिकेट लीग मैच, श्री सत्य साई रन एंड यूनिटी रन एंड राइड व श्री सत्य साई म्यूजिकल कंसर्ट हम सभी को उत्साहित करता है जब हम उस लम्हे को याद करते हैं। स्वामी, श्री सत्य साई लिक्विड ऑफ लव अ नेशनल इनिशिएटिव जिसके तहत
हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में 9000 वॉलंटियर ने वॉलंटरली रजिस्टर किया है। संस्था के अधीन 5 सेवा केंद्रों में श्री सत्य साई नित्य अनम सेवा प्रतिदिन दैनिक बेस पे सैकड़ों भक्तों को दोपहर के भोजन के रूप में खाना प्रोवाइड करती है। और इसके अतिरिक्त ऐसे अनेकों कार्य हैं जिनमें भक्तजन बड़ी तल्लीनता से शामिल होते हैं। आज का ये दिन प्रति यात्रा का दिन है और इस पावन दिवस पर श्री सत्य साई बाल विकास हरियाणा एवं चंडीगढ़ जिला यमुनानगर की बाल विकास की छात्राएं एक लघु नाटिका टाइटल्ड अष्टावकर जर्नी फ्रॉम एद्वैता टू साई प्रेमा लेकर उपस्थित हुई हैं। ये सभी छात्राएं साधारण ग्रामीण परिवेश से आती हैं। बाबा, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप अपना आशीर्वाद सने हम सभी को दें ताकि हम और बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में बड़ी तल्लीनता से भाग ले सकें। ऐसा निवेदन आपके चरणों में है। नाउ वी सीक योर परमिशन टू स्टार्ट द ब्यूटिफुल स्किट टाइटल्ड एज अष्टावकर जर्नी फ्रॉम एद्वैता टू साई प्रेमा अ स्मॉल ऑफरिंग इन योर लोटस फीट। जय साईराम।

0: आदरणीय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज के समय में अधिकतर लोग किसी व्यक्ति का मूल्य उसके रूप, कपड़े, घर या अंकों से लगाते हैं, लेकिन क्या यही असली सौंदर्य है? आइए एक माँ और बेटे के बीच होने वाली इस सुंदर बातचीत के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं।
1: अर्जुन बेटा, आपकी बाल विकास कक्षा का समय हो रहा है, साई सदन चलना है ना?
2: जी माँ, मैं तो बाल विकास कक्षा में जाने के लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ।
1: चलो बेटा। अच्छा अर्जुन, जरा मुझे यह बताओ, पिछली कक्षा में आपके बाल विकास गुरु ने क्या समझाया था?
2: माँ, पिछली बार हमारी बाल विकास कक्षा में हमारे गुरु ने भगवान बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के सूत्र समझाए थे, 4F और 4S।
1: अच्छा, बताओ तो उनका क्या अर्थ है?
2: माँ, 4F का मतलब है फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टू द एंड एंड फिनिश द गेम, और 4S में है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन।
1: शाबाश बेटा, तुमने सब अच्छी तरह से याद कर लिया। अब इन बातों को केवल याद ही नहीं रखना, बल्कि अपने व्यवहार में भी उतारना।
2: माँ, मेरे मन में एक दुविधा है, आप ही उसका समाधान कीजिए, क्योंकि मेरी माँ भी आप हैं और मेरी बाल विकास गुरु भी।
1: हाँ बेटा, बताओ क्या बात है?
2: माँ, बाबा ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि आजकल लोग केवल भारी सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, अच्छा चेहरा, अच्छे कपड़े, आलीशान घर या अधिक अंक, इन्हीं बातों को महत्व दिया जाता है। जो लोग बाहरी रूप से प्रभावशाली नहीं होते, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा क्यों?
1: हाँ बेटा, ऐसा होता है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को एक विशेष सुरक्षा कवच दिया है।
2: कैसा सुरक्षा कवच माँ?
1: बेटा, 9 सूत्री कार्यक्रम तुम्हारा साई कवच है, 4S तुम्हारा साई कवच है, 4F, 5 वैल्यूज और 5Ds भी तुम्हारे साई कवच हैं। यदि हम इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन और व्यवहार में अपनाएं, तो संसार की नकारात्मकता हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बेटा, तुम्हारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। याद रखो, असली सौंदर्य शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। यदि तुम इस सत्य को जान जाओगे, तो फिर तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
2: सच माँ?
1: हाँ बेटा, बाबा ने कहा है, तुम और मैं एक हैं। फर्क केवल इतना है कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। यदि तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लोगे, तो समझ जाओगे कि तुम भी वही हो, तब तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसी सत्य का अनुभव किया था, इसलिए हमारे वेदों ने कहा है, अहम् ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि, अयम् आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम् ब्रह्म। आत्मा के सौंदर्य के आगे शारीरिक सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं है।
2: माँ, अब मैं समझ गया कि हमें बाहरी रूप नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों और आत्मा के सौंदर्य को विकसित करना चाहिए।
1: बिल्कुल बेटा, चलो अब हमारी बाल विकास कक्षा में एक नाटक होने वाला है, उसी के माध्यम से हम इस बात को और भी अच्छी तरह समझेंगे।
0: तो आइए अब इस नाटक के अगले दृश्य की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि आत्मा का सौंदर्य क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया है।

0: कि सोच में डूबे हो अष्टावक्र, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो।
1: माँ, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ जानना चाहता हूँ, मेरे पिता कौन है?
0: तुम फिर वही सवाल लेकर बैठ गए?
1: हाँ माँ, हर बार आपने मुझे टाल दिया, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, सच जानने का अधिकार मुझे भी है।
0: ऋषि उद्दालक ने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया है।
1: मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वे मेरे पिता नहीं हैं। मेरे मन का यह सवाल सिर्फ आप ही मिटा सकती हैं।
2: यह सवाल अष्टावक्र के मन में आज नहीं उठा था। कई साल पहले हुई एक घटना ने उनके मन में ये जिज्ञासा जगा दी थी, तभी से वह अपने पिता के बारे में सच जानने के लिए बेचैन थे।
1: माँ, अब मुझसे यह इंतजार नहीं होता, कृपया आज सच बता दीजिए, चाहे सच कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।
0: अगर आज तुम्हें सब जानना है तो मैं अब तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। बेटा, तुम्हारे पिता का नाम आचार्य काहोर था।
1: मैं सुन रहा हूँ माँ, आगे बताइए।
0: वे बहुत विद्वान थे, लेकिन हमारे पास धन नहीं था। तुम्हारे जन्म से पहले उन्होंने सोचा कि यदि वे महाराज जनक के दरबार में शास्त्रार्थ जीत जाएंगे तो हमें सम्मान और सहारा मिल जाएगा।
1: फिर क्या हुआ?
0: दरबार में एक विद्वान था, बंदी। उसने शास्त्रार्थ की एक कठोर शर्त रखी, जो हारेगा उसे जल समाधि लेनी होगी।
1: क्या पिता ने वह शर्त स्वीकार कर ली?
0: हाँ, परिवार की मजबूरी और उम्मीदों ने उन्हें यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। दुर्भाग्य से वे शास्त्रार्थ हार गए और अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए जल समाधि ले ली।
1: तो मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं।
0: उस समय तुम मेरे गर्भ में थे। तुम्हारे जन्म के बाद मैं अपने पिता ऋषि उद्दालक के आश्रम लौट आई। वहीं उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया।
1: क्या वह बंदी आज भी जनक के दरबार में है?
0: हाँ, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो?
1: क्योंकि अब समय आ गया है कि अन्याय का अंत हो। मैं जनक के दरबार जाऊंगा, बंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती दूंगा और अपने पिता का सम्मान वापस लेकर रहूंगा।
0: बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है।
1: माँ, कठिन रास्तों से डरकर कोई इतिहास नहीं बनाता। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।

0: प्रणाम आचार्य।
1: आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही है, क्या बात है?
0: आचार्य, मुझे अपने पिता के बारे में सब पता चल गया है। अब मैं जनक के दरबार जाकर बंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती देना चाहता हूँ।
1: पुत्र, तुम्हारी इच्छा साहसपूर्ण है, लेकिन अभी तुम्हारी आयु कम है। दरबार के लोग तुम्हें देखकर ही लौट जाने को कह देंगे। बंदी जैसा विद्वान तुम्हें हल्के में नहीं लेगा।
0: आचार्य, ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं होता। यदि सत्य और आत्मविश्वास साथ हो तो छोटी उम्र भी बड़ी शक्ति बन जाती है। आपने जो शिक्षा दी है उसी पर मुझे पूरा विश्वास है।
1: लेकिन यदि परिणाम तुम्हारे पक्ष में ना हुआ तो?
0: यदि मैं हार गया तो यह अपने पिता के प्रति मेरा कर्तव्य होगा, और यदि जीत गया तो उनके सम्मान को वापस ले आऊंगा। दोनों ही स्थितियों में मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा।
1: तुम्हारे शब्दों में दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। जाओ पुत्र, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे मामा श्वेत केतु भी तुम्हारे साथ जाएंगे।
2: मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा।
0: आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं वचन देता हूँ कि सत्य और ज्ञान का सम्मान बनाए रखूंगा।
3: गुरु का आशीर्वाद लेकर अष्टावक्र और श्वेत केतु जनक की नगरी की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना केवल एक विद्वान से नहीं बल्कि अहंकार से भी होने वाला है।

0: गुरु का आशीर्वाद लेकर अष्टावक्र और श्वेत केतु जनक की नगरी पहुंचते हैं। पूरे नगर में यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। दूर दूर से विद्वान, ऋषि और अतिथि आए हुए थे। दोनों बंदी को खोजते खोजते राज्यसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच गए।
1: रुको, बिना अनुमति कोई भी राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। बताओ, तुम दोनों कौन हो?
2: हम आचार्य बंदी से मिलने आए हैं, उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं।
1: तुम शास्त्रार्थ? अभी तो तुम दोनों बच्चे लगते हो। पहले किसी गुरुकुल में जाकर शिक्षा पूरी करो, फिर ऐसी बातें करना।
3: द्वारपाल, किसी की योग्यता केवल उसकी उम्र देखकर मत आंको।
2: एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। उसी तरह ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं, समझ से होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कम से कम महाराज जनक को हमारे आने की सूचना दे दीजिए।
4: द्वारपाल, इन्हें अंदर आने दो। जो ज्ञान की बात करने आया है

0: जो लोग किसी की बुद्धि को छोड़कर केवल उसका रूप देखकर निर्णय लेते हैं वे ज्ञान के नहीं भ्रम के साथी होते हैं।
1: तुम्हारी बात में गहराई है, लेकिन बंदी से शास्त्रार्थ करना आसान नहीं है। जो उनसे हारता है उसे अपनी जान तक देनी पड़ती है। क्या तुम फिर भी तैयार हो?
0: महाराज, जो सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलता है वह परिणाम से नहीं डरता। मैं पूरी तैयारी और विश्वास के साथ आया हूँ। कृपया आचार्य बंदी को बुलाइए।
1: ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आज राज्यसभा इस अनोखे शास्त्रार्थ की साक्षी बनेगी।

0: तो तुम ही हो वह युवक जिसने मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती दी है।
1: जी आचार्य, मैं ज्ञान की खोज में आया हूँ, किसी से वैर करने नहीं।
0: मेरे साथ शास्त्रार्थ करने से पहले एक बात जान लो, यहाँ हारने वाले को अपनी जान तक गवानी पड़ती है। क्या तुम अब भी तैयार हो?
1: जो सत्य के लिए खड़ा होता है वह डर कर पीछे नहीं हटता। आइए आरंभ करें।
0: बताओ यह संसार क्या है?
1: जो कुछ हमारी आंखों, मन और इंद्रियों को दिखाई देता है वही संसार का अनुभव है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं। यदि यह अंतिम सत्य नहीं तो असली सत्य क्या है?
0: असली सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदैव एक रहती है। तो फिर इस सृष्टि का मूल क्या है?
1: इस पूरे ब्रह्मांड का आधार ब्रह्म है, उसी से सब उत्पन्न होता है, उसी में सब स्थित है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है।
0: जीव और आत्मा में क्या अंतर है?
1: आत्मा शुद्ध और अचल है, लेकिन जब वही स्वयं को शरीर और मन मान लेती है तब उसे जीव कहा जाता है। यही भ्रम सभी दुखों का कारण बनता है। अज्ञान किसे कहते हैं?
0: जो अस्थाई है उसे स्थाई समझना, जो शरीर है उसे अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना और सत्य को भूल जाना, यही अज्ञान है। और ज्ञान?
1: ज्ञान वह है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए, जो भेदभाव, अहंकार और ब्रह्म को समाप्त कर दे, वही सच्चा ज्ञान है।
0: क्या केवल तर्क से परम सत्य को जाना जा सकता है?
1: तर्क रास्ता दिखा सकता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अनुभव, साधना और आत्मचिंतन के बिना सत्य की प्राप्ति संभव नहीं।
2: सभा में बैठे सभी विद्वान ध्यान से सुन रहे हैं। धीरे धीरे आचार्य बंदी के पास कोई नया प्रश्न नहीं बचता, पूरा दरबार शांत हो जाता है। राजसभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। आचार्य बंदी के पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बचता।
0: अष्टावक्र, मैं स्वीकार करता हूं कि आज तुमने मुझे ज्ञान से पराजित कर दिया है। नियम के अनुसार अब मुझे दंड भुगतना होगा।
3: अष्टावक्री
4: जय।
3: अष्टावक्री की
4: जय।

0: रुकिए, मेरी जीत किसी की मृत्यु से पूरी नहीं होगी।
1: लेकिन यही तो इस सभा का नियम है, हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है।
0: गलत परंपरा कभी न्याय नहीं बन सकती। मैं यहाँ बदला लेने नहीं, अन्याय को समाप्त करने आया हूँ। आचार्य, मैं वही अष्टावक्र हूँ जिसके पिता आचार्य काहोड़ इसी नियम के कारण अपने प्राण गवा बैठे थे। मैं चाहता तो आज वही आपके साथ करता, लेकिन उससे मेरे पिता वापस नहीं आते।
1: मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो।
0: सबसे बड़ी सजा अपने अपराध का पश्चाताप है। यदि आपको सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही आपके लिए पर्याप्त दंड है। मैं आपको पूरे मन से क्षमा करता हूं।
2: आज मैंने समझा कि सच्चा विजेता वही है जो शक्ति होने पर भी क्षमा का मार्ग चुनता है। आज से मेरे राज्य में यह क्रूर परंपरा हमेशा के लिए समाप्त की जाती है।
3: महाराज की
4: जय,
3: धर्म की
4: जय,
3: ज्ञान की
4: जय।

0: उस दिन केवल एक विद्वान की जीत नहीं हुई, बल्कि अहंकार पर विनम्रता, प्रतिशोध पर क्षमा और हिंसा पर ज्ञान की विजय हुई। यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए।
1: हाँ भैया, यही तो हमें बाल विकास कक्षा में सिखाया जाता है कि यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर दें और सबसे प्रेम का व्यवहार करें तो बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। बाबा सेज, लव गिव्स एंड फॉरगिव्स, ईगो गेट्स एंड फॉरगेट्स, नरिश लव इन योर हार्ट्स, लव विल ड्राइव अवे ऑल बैड थॉट्स, इट विल प्रमोट द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस। आइए हम सभी बाबा की इस शिक्षा को अपने आचरण में लाएं। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हर्ट। देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव। देयर इज ओनली वन गॉड हु इज ओमनीप्रेजेंट। लव इज गॉड, God is love.